तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नो तू आप ही जानते हैं, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं, ते मेरे अवगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुद्र विच पानी है, इतने साड़ी विच अवगुण हैं, कृपा कर

देते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर पावो, डूब दे पत्थर तारे। जीवड़ा अग्न बराबर तपा, पीतर वगे काते, प्रणवत नानक हुकम।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा, बार जाऊं लख बरिया।

हर हर चरण दे और धारे, हर हर चरण दे और धारे, शिव स्वामी सदगुर अपना काज सब हमारे, बुंदा पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत विचारे।

इतना माल के नजदीक चला गया जिवें दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते हैं कि दुश्मन नूं भी ना आखी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा रब तू भी किठा कर और बड़ा खतरनाक ठग, शायद दुनियावी ठगां दी जाल विचों कोई निकल जाए पर तेरा ऐसा जाल है कोई नहीं निकल सकता। वेख ना एक तरफ बाप है एक तरफ पुत्र है, पुत्र जवान होंदे है दोवां विच तेरी जोत है, वेखदियां पुत्र तुर जांदा है ते बाप ताई मार के रो पैंदा है कहिंदा है मेरे जीवन दा की फर्क। ओ रो रहे ते तू तमाशा वेख कैसी तेरी ठगी है, स्त्री नूं पति लई पति नूं स्त्री लई शिकवे है। कबीर जी कहते हैं

मालक दी महान वडियाई कर दे ने हे प्रभु तेरे केड़े केड़े गुणा दा इजहार करा तू गुणा दा मुजस्मा है गुणा दा समूह भंडार है।

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार जैसा चल जाता एक दूसरे दे काम आना जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकदा जेड़ा कर सकदा ओनू जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वो मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहगुरू नाल पा के वेख मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है कर्ता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच और जिसले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए यह हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवे हथ बन के सत्कार हुंदा ना किसी दूसरे का अभिवादन करना होवे आदर करना होवे ता भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने एदे पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हां अरदास अरदाश्त बेनती कर रहा हां अर्ज कर रहा हां मैं केवल अरदास जुड़िया हां एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराए बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ए वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहिंदा ते इहदे वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु दा होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं पिया वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तो करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा है घबराया हुंदा है डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा है पसीने पूंजदा है सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा है वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी माण हुंदा सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
कार्ज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे जदो सतगुरु कार्ज करन आ जावे उसले कार्जा च सोभा हुंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਬਲਕਿ

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रसना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जा भैणा नू ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणा जा वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

जी बदो मुल्ला कहो ने आओ खुदाई, जी बदो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत भाई, जी बदो सो धर्म कर थापो, अधर्म

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

राम संग उजियारा, जहां पंत तेरा को न सिजानू, हर का नाम ते नाल पछानू।

0: रहे जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: पापा जी ताड़ी आज छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हां।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं थोड़ी को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता।
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी दी छपड़ी ओदे कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठदे ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत न।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लांदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक दी अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उत्थे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई ना निले सो सिर कफल उतार। जो सिर साई ना निले सो सिर की देखाए उन्ने बैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: साहब जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता।
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिर ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया पर असी साडे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना दमड़ा।
5: ओ चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया लई तो नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन में आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा हूं।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां।
5: मेरिया लोड़ा। मेरिया लोड़ा तो खुदावन पूरिया करता है तो हो भी चाहिए वे की जो कुछ मैं लोग दे जाते ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना। दिन वेले बेड़ी चढ़ाना तो रात लंगर चो ढेड भर के बार थे सौ जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
4: तन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है। उरे दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस औगन हारे नू इस पास सागर तो पार उतारो।

जमरौत दी जंग विच सिखां ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाड़ा नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अगे तीन काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है, मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोरे नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अधी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

विनती कर रहे भीखम शाह, जो जात का मुसलमान है, पंजाब की धरती का रहण वाला, आज भीखम शाह जदों सुबह नमाज अदा करन लगा, भीखम शाह दे नाल सारे मुरीद भी सन, और जिस वेले पश्चिम वाल भीखम शाह नमाज पढ़न वास्ते खड़ा होया, तां भीखम शाह नू अदुति प्रकाश दे दर्शन होए।

जिस खुदावंद नू मैं रोज पश्चिम वाल नमाज अदा करता सा, आज उसने पूर्व दे विच पटने शहर दे विच जन्म लिता है। साथ सगत बोलो श्री। सारे मुरीद हैरान रह गए। बीखम शाह कहन लगा, हां जे मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो फिर सारे चलो पटने दी धरती ते, किथे बिहार दी राजधानी पटना, किथे पंजाब पटियाले दे कोल रहन वाला बीखम शाह अपने मुरीदा नू लै के, उस वेले कोई रेल गड्डियां दे साधन नहीं सन, एक घुड़सवारी दे साधन होया करदे सन, अपने मुरीदा नू नाल लै के कितने दिन यात्रा करदा होया, जदों बीखम शाह उस स्थान ते आ पहुंचिया जिथे माता गुजरी दी कुख विचों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे घर गोबिंद राय जी प्रगटे। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन करन बीखम शाह पंजाब तो तुर के पटने दी धरती ते आया, और आके अरदास कीती के मेनू एक वरा उस बालक दे दर्शन कराओ जिसने तुहाडे घर जन्म लिता है। माता गुजरी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे माता जी, माता गुजरी जी कहन लगे, अजे साडा जो ए लाल है बहुत छोटा है, ए बालक छोटा है, असी अजे 40 दिन भी नहीं होए, इनू बार नहीं कढ़ना, किते नजर ना लग जावे किसे दी। बीखम शाह कहन लगा, मैं ता होर कुछ नहीं मंगदा, तुहाडे कोलों पैसा नहीं मंगदा, कोई पदार्थ नहीं मंगदा, मैं ता इतनी दूरों चल के आया हां अपने मुरीदा दे नाल सिर्फ इस वास्ते के एक वरा मेनू गोबिंद राय जी दे दर्शन करा दे। साथ सगत बोलो श्री। ता मामा कृपाल चंद, मामा कृपाल जी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे मामा सन, माता गुजरी दे भाई, कहन लगे, चंगा तेनू दर्शन कराउंदे हां फकीर, आ बीखम शाह तेनू दर्शन कराउंदे हां क्योंकि तेरे मन विच जो प्यार है ओ सच्चा प्यार लगदा है। मामा कृपाल जी गोबिंद राय जी नू दुशाले विच लपेट के जदों लै के आए, दलीजां विच खलोते होए आख्या, इत्थों ही दर्शन कर लो, अजे गोबिंद राय जी नू दलीज विचों बार कढ़न दी आग्या नहीं मिली। दुशाले विच लपेटे होए जदों गोबिंद राय जी दे सोहणे मुखड़े दे दर्शन कीते बीखम शाह ने, तां बीखम शाह ने आख्या, तू ओही है जिसनू मैं रोज 5 वरां नमाज पढ़ के मनाउंदा रहा, तू गोबिंद राय उस अल्लाह दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री। वेखण वालियां अखां जो मिल गईयां, जिसनू भी प्रभु दे वेखण दियां अखां प्राप्त होईयां उसे नहीं पछाणिया। बीखम शाह डंडौत विच पै गया, जितने मुरीद नाल आए सन उना दे मन विच संसा आ गया, संकोच आ गया कि असी बीखम शाह दे मुरीद हां, लेकिन बीखम शाह ए की कर रहे, एक बालक अगे मत्थे टेक रहे। तां बीखम शाह कहन लगा अपने मुरीदा नू के तुहाडे मन विच इस बालक दे वास्ते संसा आया तां मैं हुणे दूर कर देंदा। दो मिट्टी दी कुजियां मंगाईयां बीखम शाह ने, एक मिट्टी दी कुजी विच मिश्री पा के सज्जे हाथ विच रख लई, एक मिट्टी दी कुजी मिश्री पा के खब्बे हाथ विच रख लई, और अपने मन विच ए संकल्प कीता और मुरीदा नू दस्या के भई असी ए दोनों कुजियां हाथ विच लै के बालक दे अगे खलोवांगे, जे तां इस बालक ने

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लैणे दा भी, क्योंकि पता सी कि आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक हो। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे कि इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगता, मगर मगर संगता नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग गया, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए, सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही झोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो झोलियां भर के घरां नूं चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नूं कोल सदिया,
अपने हृदय नाल ला के पाई लेने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होई। और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं और की कहिंदे हैं।

तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नो तू आप ही जानते हैं, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं, ते मेरे अवगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुद्र विच पानी है, इतने साड़ी विच अवगुण हैं, कृपा कर

देते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर उपावो, डूब दे पत्थर तारे। जोड़ा अग्न बराबर तपे, पितर वगे काते, प्रणवत नानक हुकुम।

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नू उपदेश देंदे होए यह गल समझांदे ने, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नू भी माड़ा आखिया, ओ ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नू चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरे पातशाह मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विशे विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया है।

जे मनुख चंगियाई वाल तुरे ना वो अपने गुण ही गिनी जांदा। कहिंदा वेखो मेरे अंदर किन्ने गुण ने। कदी असीं परमात्मा दे गुणा वाल भी ध्यान दिता है? जे एक व्यक्ति दे गुण नहीं गिने जा सकते कि असीं परमात्मा दे गुण गिन सकते हैं? नहीं। इत्थे ये कहना पाएगा, हे परमात्मा तू बेअंत है, मेरे अंदर अवगुण बतेरे ने, मैं ते अवगुण बख्शान आया, किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा, किछ रूप नहीं, मेरा ते रूप भी चंगा नहीं। हुण तुसी हैरान होवोगे कि रूप केड़ा। सानू अपनी सुंदरता ते माण है, खूबसूरती ते माण है कि असी बड़े खूबसूरत। साहब कहिंदे ने ना भाई, इत्थे रूप है सेवा दा, किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं। कईयां नूं माण हुंदा कि मेरी जात बड़ी उच्ची है, मैं बड़ी उच्ची कुल विचों हां। साहब कहिंदे ने नहीं, इत्थे रूप है सेवा दा ते जात है नाम जपण वालिया। उच्ची कुल विच कौन ने? जिन्ना कुल सिमरन है। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा। हे परमात्मा मेरे कुल कोई ऐसा ढंग भी नहीं। फिर कहिंदे ने क्या मूह लै बोले गुण विहून, नाम जपिया ना। क्या मूह लै बोले? हे परमात्मा मैं किड़ा मूह लैके तेरे सामने आवा, किवें तेरा सामना करा? कहिंदे ने जिवें एक मित्र अपने मित्र नूं कहिंदा, मित्रा ऐ मेरा एक काम है ते तू कर सकदा, ते तू ये काम मेरा जरूर करना है। कहन लगा चंगा भाई जरूर करांगा। कुछ समा बीते है कि दोनों मित्रां दा सामना हो गया। हुण जिस मित्र ने अपने मित्र नूं काम किया सी उहनूं भी याद आ गया, ते जिसने हामी भरी सी उहनूं भी याद आ गया। हुण जिसने काम आख्या सी उह कहन लगा, लै मेरा मित्र मिलिया, काम होया होना, मैं अज इहनूं पुछना, ते जिन्हें करना सी उहने कीता, कोई नहीं हुण उह अख बचांदा है। कहिंदा किते होवे ना होवे ए अख परा करे ते मैं कोलों दी लंघ जा, इहदा मेरा सामना ना होवे। जे सामना हो गया इन्ने मैनू पुछना, मित्रा सुना काम कीता ही, मैं जवाब की देवांगा, की आखांगा? साहिब कहिंदे ने भाई इसे तरह उस परमात्मा अकाल पुरख ने तेरे जिम्मे एक ड्यूटी लाई सी। जदों तू परमात्मा तो आया है ना, तू संसार विच जन्म लिया है ना, माता दे गर्भ विच सैं, उदों तू परमात्मा नाल एक वादा कीता सी, हे परमात्मा एक बार संसार विच भेज, मैं तेरा सिमरन जरूर करांगा। उदों एक वादा कीता होया। कहिंदे ने हुण ओ ते तू भुल गए है, ते परमात्मा दा सामना किवें करें? जदों परमात्मा दे सामने होया उन्हें पहले पुछना, सुना मित्रा जिहड़ा वादा कर गया सैं ओ पूरा कीता ही? नाम जपिया ना तेरा, मैं तेरा नाम नहीं जपिया, मैं सिमरन नहीं कीता, जेड़ा वादा कीता सी मैं पूरा नहीं कर सकिया। साहब कहिंदे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

चंगे, हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करन वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले हां। किवें चंगे होए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा, आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथा है, बाणी बड़ी अथा है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे, जे किते मन च बस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी है, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लैने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे किस तरह बेनती करिए

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है। कहंदे 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकदा है। ते नाम मिलदा कित्थों है आख्या जपन वालियां दी संगत विच तैनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि यह गुरु की शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नूं, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तां तेरा मनुच्छा जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

अपने सतगुर के बनहारे, अपने सतगुर के बनहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे आगे।